0: Luister Radio SBS in Midden-Nederland en in Zuid-Holland en ver daarbuiten in je auto en thuis op je DAB Plus Radio.
1: बड़ा कीमती होता है वक्त इश्क मोहब्बत और प्यार का कभी कभी आता है ऐसा मौसम इजहार का।

हमारी सभी सुनवालों की सेवा में मेरे तरफ से हर एक को सादर नमस्कार और आदाब और सलाम। ये है ब्रॉडकास्टिंग स्टेशन रेडियो SBS का प्रोग्राम जो आप सभी और सभी सुनवालों की सेवा में बस पेश किया जा रहा है। जो बीमार या लाचार है भगवान तंदुरुस्त के लिए प्रार्थना या तो अल्लाह से दुआ किया जा रहा है सभी की दुख और गमी हमेशा के लिए दूर करने के लिए। जिन लोगों के घर पर खुशियां है शादी सालगिरह विवाह संस्कार जन्मदिन या तो प्यारा प्यारा बच्चा पैदा हुआ है तहे दिल से बधाई और मुबारकबाद पेश किया जा रहा है रेडियो SBS का पूरा और पूरा टीम के तरफ से। सुन वालों आज बुधवार का दिन है 5 अगस्त का प्रोग्राम आप सभी सुन वालों की सेवा में पेश किया जा रहा है। आप सभी सुन वालों को शुभ सुबह शुभ दिन पेश किया जा रहा है। आप सभी सुन वालों को ये दिन लाख लाख बधाई हो मुबारक हो रेडियो SBS का पूरा और पूरा टीम के तरफ से। घड़ी की ओर देखा जाए 7 बजकर प्रोग्राम में 2 मिनट व्यतीत हो चुका है 12 मिनट ओवर 7। सभी इन्फॉर्मेशन के लिए इन्फो के लिए रेडियो SBS का टेलीफोन नंबर 030-265-65-60 है। स्टूडियो का टेलीफोन नंबर और रेडियो SBS का एप नंबर 030-262-66-11। वेबसाइट होता है radio.sbs.nl। उसी वेबसाइट के जरिए आप मेल भी कर सकते हैं और उसी वेबसाइट के जरिए अपना मोबाइल टेलीफोन के जरिए भी आप रेडियो SBS का ऐप पर ऐप भी कर सकते हैं। रेडियो SBS का वेबसाइट के जरिए ये प्रोग्राम भी दुनिया के कोने कोने में आप अपना मोबाइल टेलीफोन टैबलेट आईपैड कंप्यूटर के जरिए भी सुन सकते हैं। सभी इंटरनेट रेडियो के जरिए और डीएबे प्लस रेडियो के जरिए अपना मोटर कार में अपना घरों में आप सुन सकते हैं। हॉलैंड देश के बीच में नेदर नीदरलैंड में और प्रोविंसी साउथ हॉलैंड में। मैं हूं आपका खिदमत गुजार रबीन। यहां से प्रोग्राम भजन यात्रा आप सभी सुनने वालों की सेवा में पेश किया जा रहा है। भजन यात्रा प्रोग्राम का पहला भजन हमेशा होता है हरी हरन के आवास में सुबह सुबह लो शिव का नाम पेश किया जा रहा है हमारी सभी सुनने वालों और सभी भक्त प्राणियों के लिए।

सुबह लो शिव का नाम हरिहरन के आवास में ये सुंदर सा भजन आप सभी भक्त प्राणियों के लिए, सभी सुनने वालों के लिए बस पेश की गई और रेडियो SBS के जरिए प्रोग्राम भजन यात्रा आप सभी सुनने वालों की सेवा में पेश किया जा रहा है और इस प्रोग्राम को आप जरूर और जरूर सुनते ही रहना जहां जहां पर भी आप सभी ये प्रोग्राम को सुनते हैं। सभी सुनने वालों जो रेडियो SBS का ऐप पर ऐप किया है सभी को शुभ सुबह शुभ दिन पेश किया जा रहा है और रेडियो SBS का प्रोग्राम जो है जरूर और जरूर सुनते ही रहना। घड़ी की ओर देखा जाए 7:00 प्रोग्राम में 11 मिनट व्यतीत हो चुका है। स्टूडियो का टेलीफोन नंबर और हमारा रेडियो SBS का ऐप नंबर 03-22-66-66-11 है। जब ये आप स्टूडियो की ओर तार करना चाहेंगे या ऐप करना चाहेंगे या ऐप द्वारा आप तार करना चाहेंगे तो यही तार की नंबर जो है आप काम में लाइए 03-22-66-66-11। भजन जो पेश होगा बुधवार का दिन है, सुंदर सा गणेश जी का भजन आप सभी भक्त प्राणियों के लिए मनोज मिश्रा की आवाज में बस पेश किया जा रहा है, जरूर और जरूर सुनते ही रहना।

सुंदर सा भजन बस प्रोग्राम में पेश किए गए मनोज मिश्रा की आवाज में अभी आपने सुना रेडियो SBS का भजन यात्रा प्रोग्राम में जो पेश किए गए आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। प्रोग्राम जरूर आप सुनते ही रहना, सुनने वालों आपको याद दिलाया जा रहा है रेडियो SBS का वेबसाइट पर रोजाना आपका नया ज्योतिष शास्त्र यानी कि दख होरोस्कोप भी होता है, जरूर आप जाकर देखिए रेडियो SBS का वेबसाइट पर अपना मोबाइल फोन पर रेडियो SBS.NL वेबसाइट होता है और उसी वेबसाइट के जरिए अपना मोबाइल फोन के जरिए हमारा ये प्रोग्राम जो है भजन यात्रा प्रोग्राम भी आप सुन सकते हैं। चले प्रोग्राम में सुंदर सा भजन जो आप सभी सुनने वालों की सेवा में पेश किया जा रहा है रेडियो SBS के जरिए जरूर सुनते ही रहना।

सुंदर सा भजन आप सभी सुनने वालों की सेवा में पेश की गई रेडियो SBS की जरिए। सुनने वालों प्रोग्राम भजन यात्रा हर सुबह आप सभी सुनने वालों की सेवा में पेश किया जा रहा है। सोमवार से लेकर के शुक्रवार तक सुबह 7 बजे से लेकर के 8 बजे तक और वीकेंड में यानी कि शनिवार और रविवार प्रोग्राम पेश किया जा रहा है। भजन यात्रा सुबह 8 बजे से लेकर के और 9 बजे तक।

भजन आप सभी सुनने वालों की सेवा में बस पेश की गई रेडियो SBS की जरिए। शहर यूट्रेक्ट से ये प्रोग्राम आप सभी सुनने वालों की सेवा में पेश किया जा रहा है। रेडियो SBS का प्रोग्राम सालों से आप सभी सुनने वालों की सेवा में पेश किया जा रहा है और सालों से भी ये प्रोग्राम भजन यात्रा पेश किया जा रहा है। एक भजन के बाद आप सभी सुनने वालों की सेवा में आरती भजन पेश किया जाएगी।

पूरा टीम के तरफ से, हमारी तरफ से, हमारा पूरा परिवार के तरफ से आप सभी सुनने वालों के लिए, सभी भक्त प्राणियों के लिए, उन सभी के लिए जो बीमार या लाचार है, सभी दुखित प्राणियों के लिए, सभी बच्चों के लिए, सभी जो आज नौकरी करने वाले हैं, काम करने वाले हैं, सभी को शुभ दिन। और हमारी सभी सुनने वालों जो दुनिया की कोने कोने में रेडियो SBS का प्रोग्राम को सुनते हैं, उनके लिए, उनके पूरा परिवार के लिए, और सभी सुनने वालों जो रेडियो SBS का ऐप पर ऐप किया है, उनके लिए और उनके पूरा परिवार के लिए, हर एक के लिए शुभ सुबह, शुभ दिन के साथ ये सुंदर आरती भजन पेश किया जा रहा है गोल्डन वॉइस ऑफ प्रदीप की आवाज में। आप सुनते

जी की आवाज में ये गाना बस पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। आज बजकर प्रोग्राम में 8 मिनट वेटेड हो चुका है। रेडियो SBS का प्रोग्राम आप सभी सुनने वालों की सेवा में पेश किया जा रहा है। वुस्ताख 5 अगस्त का प्रोग्राम आप सुन रहे हैं और इस प्रोग्राम को आप जरूर और जरूर सुनते ही रहना। कुनाल गांजावाला एंड अलका प्रोग्राम में

चाइनाटाउन फिल्म का नाम कुनाल गंजावाला और अलका जी की आवाज में ये गाना पेश की गई है आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। चलिए प्रोग्राम में एक गाना की ओर हम आपको ले चलते हैं।

रेडियो SBS के जरिए। ये गाना आज के प्रोग्राम में पेश की गई, हमने तुमको दिल दे दिया, ये भी ना पूछा कि कौन हो तुम। 14 मिनट बाकी है सुबह 8:30 बजने में, रेडियो SBS का प्रोग्राम आप सुन रहे हैं।

रेडियो SBS की जरिए। गाना पेशवा है पन्ना की तमन्ना है कि हीरा मुझे मिल जाए। रेडियो SBS की जरिए ये गाना भी आपने सुना। सुन वालों, आपको खबर किया जा रहा है रोजाना आपका दख हॉरोस्कोप यानी कि ज्योतिष शास्त्र रेडियो SBS का वेबसाइट पर होता है। जरूर अपना मोबाइल फोन पर आप जाइए रेडियो SBS का वेबसाइट पर radio.sbs.nl और उसी वेबसाइट पर अपना ज्योतिष शास्त्र आप जरूर देखिए। जब भी आप चाहे जाकर आप देख सकते हैं। चले प्रोग्राम में गाना की ओर। रेफ्यूजी फिल्म का नाम होगा सोनू निगम एंड अलका याग्निक।

एक गाना बस पीस की गई फिल्म का नाम कर्ज, एक फिल्म जो 2002 में रिलीज किया गया है। फिल्म कर्ज का गीत अभी आपने सुना कुमार सानू और कविता कृष्णमूर्ति की आवाज में। अब की बार एक गाना पेश किया जा रहा है सोनू निगम और अनुराधा पोटवल की आवाज में।

रेडियो SBS की श्री सोनू निगम और अनुराधा पोटवल की आवाज में गाना प्रोग्राम में पेश की गई। हम आपको ले चलेंगे अब की बार अनुराधा पोटवल और उदित नारायण की ओर।

में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। रेडियो SBS का स्टूडियो का टेलीफोन नंबर है 03-262-66-66-11। इसी तार की नंबर पर टेलीफोन नंबर पर हमेशा और हमेशा आप तार कर सकते हैं। तुलसी कुमार एन राहत फतेह अली खान की आवाज में ये गाना पेश किया जा रहा है।

रेडियो एसबीएस की जरिए राहत फतेह अली खान और तुलसी कुमार की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम भी पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। बहुत सी सुनने वालों है जो इस वक्त

सुनने वालों 9 बजकर प्रोग्राम में 3 मिनट व्यतीत हो चुका है। यहाँ से प्रोग्राम में हम आपको ले चलेंगे पुरानी फिल्में संगीतों का प्रोग्राम की ओर। पुरानी फिल्में संगीतों का प्रोग्राम जरूर आप सुनते ही रहना, जो आप सभी सुनने वालों की सेवा में पेश किया जा रहा है। और आपको मालूम होना चाहिए, मालूम ही होंगे कि ये प्रोग्राम हर सुबह 9 बजे से लेकर के और 11 बजे तक आप सभी सुनने वालों की सेवा में बस पेश किया जा रहा है। काफी सुनने वालों बस ऐप द्वारा रेडियो SBS का

आपको ले चलते हैं पुरानी नगमे की ओर। सबसे पहले आप सभी को स्वागत किया जा रहा है गर्मा गर्म कॉफी या चाय की ओर के साथ। प्रोग्राम जो है जरूर आप सुनते ही रहना। पुरानी फिल्में संगीतों का प्रोग्राम में ये गाना पेश किया जा रहा है।

मन्ना डे और लता जी की आवाज में ये गाना प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। रेडियो SBS का प्रोग्राम आप सभी सुनने वालों की सेवा में पेश किया जा रहा है। आज का प्रोग्राम जरूर और जरूर सुनते ही रहना कुछ बुरानी नखमे आप सभी सुनने वालों की सेवा में जो पेश किया जा रहा है। किशोर एंड लता, हम आपको ले चलते हैं फिल्म का नाम दो चोर। किशोर और लता जी की आवाज में ये गाना आप सुनते ही रहना।

जनाब उस प्रोग्राम में पेश की गई सभी सुनने वालों की सेवा में। चले अमित कुमार और लता जी की आवाज में ये गाना पेश किया जा रहा है आप सभी सुनने वालों की सेवा में। सुनने वालों रेडियो SBS का प्रोग्राम शहर उत्तराखंड से बस पेश किया जा रहा है। वेबसाइट होता है radio sbs.nl।

अमित कुमार और खासतौर पर लता जी की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गए आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। लाइव के जरिए ये प्रोग्राम पेश किया जा रहा है रेडियो SBS का और आज का ये प्रोग्राम जरूर और जरूर सुनते ही रहना। चले प्रोग्राम में तलत महमूद और लता जी की आवाज में ये गीत पेश किया जा रहा है।

लता मंगेशकर और तलत महमूद जी की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई सभी सुनने वालों की सेवा में। एक गाना की ओर हम आपको ले चलेंगे लता जी की आवाज में जो पेश किया जा रहा है आज के प्रोग्राम में, जरूर और जरूर सुनते ही रहना ये गाना जो आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में जो पेश किया जा रहा है।

लता जी की आवाज में खास गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में रेडियो SBS का प्रोग्राम आप सुन रहे हैं। चले प्रोग्राम में अबकी बार एक गाना की ओर हम आपको ले चलते हैं, जो आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में पेश किया जा रहा है मोहम्मद रफी की आवाज में। बॉलीवुड फिल्मी दुनिया का सुपर एंड सुपरस्टार धर्मेंद्र का एक्टिंग किया हुआ गाना।

मोहम्मद रफी की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश किए गए आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में किशोर कुमार प्रोग्राम में।

रेडियो SBS के जरिए गाना बस किशोर कुमार की आवाज में आप सभी सुनने वालों की सेवा में पेश की गई। चले प्रोग्राम में मोहम्मद रफी की आवाज में अब की बार ये गाना पेश किया जा रहा है।

मोहम्मद रफी की आवाज में ये गाना प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी सुनने वालों की सेवा में हूँ। सुनने वालों हर एक इन्फॉर्मेशन के लिए टेलीफोन नंबर है 030-265-65-60 और स्टूडियो का टेलीफोन नंबर है 030-262-66-11।

गीता जी की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। एक गाना एडो फिल्म तीसरी कसम पेश किया जा रहा है सॉन्ग बाय आशा भोसले।

अच्छा जी की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गए आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में रेडियो SBS की जरिए अभी आपने सुना एक गाना की ओर अबकी बार हम आपको ले चलते हैं आज के ये प्रोग्राम में और ये होगा मोहम्मद रफी और लता जी की आवाज में मोहम्मद रफी एंड लता प्रोग्राम में एक और काफी प्यार भरी गाना पेश किया जा रहा है आज की इस प्रोग्राम में

रफी, मोहम्मद रफी एंड लता ने फरमाए, काफी खूबसूरत प्यार भरी गाना आज की इस प्रोग्राम में बस पेश की गई रेडियो SBS के जरिए। संगीत भरी स्टेशन है, अगर आपको प्यार भरी गाने सुनना है तो हमेशा एक ही रेडियो स्टेशन पर चुन कीजिए, जहां पर हमेशा ज्यादा से ज्यादा संगीत पेश किया जा रहा है, और वो भी प्यार भरी, जिसकी ये गाना

पद्म श्री मोहम्मद रफी की आवाज में ये गाना बस आज की प्रोग्राम में पेश की गई है। शहरी ट्रक से ये प्रोग्राम आप सभी सुनने वालों की सेवा में पेश किया जा रहा है। लाइव फन आउट एट हार्ट फॉर नीदरलैंड, फन आउट मिड नीदरलैंड, फन आउट एट मोसेस्टाड फॉर नीदरलैंड, ये है रेडियो SBS। मोहम्मद रफी एक बार फिर से प्रोग्राम में साथ में होगा सुमन कल्याणपुर, मोहम्मद रफी एंड सुमन कल्याणपुर प्रोग्राम में।

गाना जो पेश की गए पद्मश्री मोहम्मद रफी और लता जी की आवाज में अभी आपने सुना। चलिए एक और खूबसूरत गाना मोहम्मद रफी की आवाज में पेश किया जा रहा है।

0: कभी तो हंसाए, कभी ये रुलाए।
1: रेडियो वेस में इसकी जरिए मन्ना डे की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गए। चलिए एक गीत पेश किया जा रहा है और वो भी द माइटी मुकेश की आवाज में है। माइटी मुकेश की आवाज में ये गाना पेश किया जा रहा है।

रेडियो वेज में इसके जरिए ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी सुनने वालों की सेवा में अपने हुए पराए द हार्ट ऑफ द मिलियंस द माइटी मुकेश की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई सभी सुनने वालों की सेवा में।

आवाज में ये गाना पेश की गई आप सभी सुनने वालों की सेवा में। आशा उम्मीद है कि गाना आप सभी ने सुना और बेहद पसंद किया। रेडियो SBS के जरिए जो पेश की गई

रेडियो SBS की जरिए किशोर कुमार और अनुराधा पोटवाल की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई है आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में आसरो भी थे कि गाना आप सभी ने सुना और बेहद पसंद किया। रेडियो SBS की जरिए जो पेश की गई सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में किशोर और अनुराधा पोटवाल के बाद मोहम्मद रफी प्रोग्राम में फिल्म का नाम है मर्यादा।

पुरानी फिल्म मर्यादा का गीत भी इसकी गई मोहम्मद रफी की आवाज में अभी आपने ये सुना। आशा है उम्मीद है कि गाना आप सभी ने सुना और बेहद पसंद किया। रेडियो SBS की जरिए जो पेश की गई सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। चलिए आज के प्रोग्राम में एक गाना की ओर हम आपको ले चलते हैं जो गीता दत्त की आवाज में आप सभी सुनने वालों की सेवा में पेश किया जा रहा है। गीता दत्त की आवाज में ये गाना आप सुनते ही रहना।

गीता दत्त के आवास में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई। आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में रेडियो SBS के जरिए अभी आपने सुना। चले प्रोग्राम में द हार्ट ऑफ द बिलियंस द माइटी मुकीस की ओर हम आपको ले चलते हैं। अब की बार गाना जो पेश किया जा रहा है

जी की आवाज में ये गाना बस पेश की गई फिल्म का नाम कुछ कुछ होता है। उसी फिल्म का टाइटल सॉन्ग बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी सुनने वालों की सेवा में। चले अब की बार उदित नारायण और अलका जी की ओर। एक और काफी खूबसूरत प्यार भरी गाना पेश किया जा रहा है और

नारायण और अलका जी की आवाज में ये गाना पेश की गई तेरे नाम। रेडियो SBS का प्रोग्राम आप सुन रहे हैं, वेबसाइट होता है रेडियो SBS.NL। उदित नारायण और अलका के बाद एक और काफी खूबसूरत प्यार भरी गाना कुमार सानू और साधना सरगम की आवाज में अब की बार ये गाना आप सभी सुनने वालों की सेवा में पेश किया जा रहा है। आसरों मीठे की सुनकर और बेहद पसंद करेंगे।

साधना सरगम ने फरमाया आज की प्रोग्राम में। चले प्रोग्राम में सोनू निगम एंड अलका जी की ओर। सोनू निगम एंड अलका

सोनू निगम और अलका जी की आवाज में गाना परदेसी बस पेश की गई आप सभी सुनने वालों की सेवा में रेडियो SBS की जरिए भी आपने सुना। 030-262-6611 स्टूडियो का टेलीफोन नंबर है। गाना जो आपकी बार पेश होगा कविता कृष्णमूर्ति एंड सोनू निगम की आवाज में। सभी हितनक में रेडियो SBS की जरिए बस पेश किया जा रहा है संगीत भरी स्टेशन रेडियो SBS।

प्रोग्राम में पेश की गई रेडियो SBS के जरिए शहरी तरह से ये प्रोग्राम आप सभी सुनने वालों की सेवा में बस पेश किया जा रहा है। चले कुमार सानू एंड साधना सरगम की ओर। मैंने कहा ना सभी हिट गाने इसी रेडियो स्टेशन के जरिए बस पेश किया जा रहा है। संगीत भरी स्टेशन रेडियो SBS।

सरगम के आवाज में ये खूबसूरत गाना बस पेश की गई है। सुनो वालों, हर एक काम काज के लिए रेडियो एस बी एस का टेलीफोन नंबर है 0325656566। अभिजीत औरल का प्रोग्राम है।

अभिजीत और अलका की आवाज में ये गाना पेश की गई, मेरी चाहतों का समुंदर तू देखो।

कुमार सानू जी की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गए आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में आसरा उम्मीद है। खूबसूरत सा गाना आपने सुना कुमार सानू की आवाज में सुनकर और बेहद पसंद किया है। के और शिल्पा राव की आवाज में चले मिलकर ये गाना सुनते हैं। ऐ दो फिल्म बचना ए हसीनो।

और रेडियो SBS की सर ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई के और शिल्पा राव की आवाज में गाना भी आपने सुना आज की

चले प्रोग्राम में अबकी बार जुबिन और साथियों की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश किया जा रहा है। रेडियो SBS का प्रोग्राम आप सुन रहे हैं, जरूर सुनते ही रहना।

रेडियो में इसकी जरिए ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई विशाल मिटुन और साथियों की आवाज में अभी आपने सुना रेडियो एसबीएस की जरिए ये खास गाना जो पेश हुआ है एक तो फिल्म खुदा हाफिज फिल्म सड़क नंबर 2 अंकित तिवारी और लीना भोज की आवाज में ये गाना प्रोग्राम में अबकी बार

उसकी आवाज में ये गाना पेश की गई, सड़क नंबर 2 फिल्म का नाम, फिल्म जो 2020 में रिलीज किया गया है। सुन वालों हर एक इंफॉर्मेशन के लिए 0325 65 65 60 पर हमेशा, और

0: विशाल शेखर के शान और तुलसी कुमार की आवाज में गाना पेश की गए बागी नंबर 3 से। अभी आपने सुना ये खास गाना। चले प्रोग्राम में अरमान मलिक की ओर हम आपको ले चलते हैं और गाना का बोल है मेरा इंतजार करना।
1: फिर रोशनी खिड़की से आएगी,

रेडियो SBS की सरिया खास गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में, और वो भी अरमान मलिक की आवाज में गाना भी आपने सुना जो आज की प्रोग्राम में पेश की गई सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में।

सुनने वालों की सेवा में। सुनने वालों, रेडियो SBS का वेबसाइट radio.sbs.nl उसी वेबसाइट की जरिए अपना मोबाइल टेलीफोन टैबलेट आईपैड कंप्यूटर की जरिए भी हमारा ये प्रोग्राम को आप सुन सकते हैं। चले लता मंगेशकर एंड मोहम्मद रफी की आवाज में अब की बार ये गाना पेश किया जा रहा है। फिल्म का नाम है जीवन।

भी सुनने वालों की सेवा में एक गाना किशोर कुमार की आवाज में आज की प्रोग्राम में पेश किया जा रहा है और फिल्म का नाम आपकी कसम। आपकी कसम फिल्म का नाम है, किशोर कुमार की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम में आप सुनते ही रहना, जो आप सभी सुनने वालों की सेवा में पेश किया जा रहा है।

कुमार, किशोर कुमार की आवाज में, द मैन विद एवरग्रीन वॉइस, किशोर कुमार की आवाज में फिल्म आपकी कसम, उसी फिल्म का गीत बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। एक गाना आज की प्रोग्राम में आशा जी की आवाज में पेश किया जा रहा है। हम आपको ले चलते हैं फिल्म का नाम तीसरी कसम।

ने सुना आज की ये प्रोग्राम भी जो पेश की गई है। चलिए एक फिल्म का गीत की ओर हम आपको ले चलते हैं, जिस फिल्म का नाम है राजकुमार। मरहूम मोहम्मद रफी की आवाज में गाना पेश होगा रेडियो SBS का आज की इस खास प्रोग्राम में। सुनने वालों, स्टूडियो का टेलीफोन नंबर है, तार का नंबर है 030-262-6611। शहर उत्रेख हॉलैंडी से ये प्रोग्राम आप सभी सुनने वालों की सेवा में बस पेश किया जा रहा है। मरहूम मोहम्मद रफी फिल्म का

मरहूम मोहम्मद रफी की आवाज पे ये गाना बस प्रोग्राम पे पेश की गई। फिल्म का नाम राजकुमार। सुन वालो, रेडियो SBS का वेबसाइट radio.sbs.nl है, उसी वेबसाइट की जरिए हमारा प्रोग्राम अपना मोबाइल टेलीफोन, मोबाइल फोन, टैबलेट, आईपैड, कंप्यूटर की जरिए भी आप सुन सकते हैं और उसी वेबसाइट की जरिए भी आप ईमेल कर सकते हैं और उसी वेबसाइट की जरिए हमारा फेसबुक, यूट्यूब चैनल, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर आप जा सकते हैं। लता मंगेशकर प्रोग्राम में, लता जी की आवाज में ये खूबसूरत गाना पेश किया जा रहा है।

लता मंगेशकर की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी सुनने वालों की सेवा में। और सुनने वालों बस इस वक्त प्रोग्राम भी सुनते हैं, अपना अपना रिएक्शंस भी देते हैं। चले किशोर एन आशा जी की ओर हम आपको ले चलते हैं, एक काफी प्यार भरी गाना आपकी बार प्रोग्राम में पेश किया जा रहा है।

बस दीवानी है, महल फिल्म का नाम, गाना जो पेश की गए आप सभी सुन वालों की सेवा में। किशोर कुमार एंड आशा के बाद मुकेश और लता जी की आवाज में आज के प्रोग्राम में ये खास गाना पेश किया जा रहा है। हम आपको ले चलेंगे फिल्म का नाम मेरे हम सफर, मुकेश और लता जी की आवाज में ये खूबसूरत गाना पेश किया जा रहा है। रेडियो SBS का प्रोग्राम आप सुन रहे हैं और प्रोग्राम को जरूर सुनते ही रहना। मैं हूं आपका खिदमत गुजार रबीन।

इसके गए गाना का बोल किसी राह पे किसी मोड़ पे, फिल्म का नाम मेरे हम सफर। रेडियो SBS का प्रोग्राम आप सुन रहे हैं। अब की बार एक काफी खूबसूरत गाना की ओर हम आपको ले चलते हैं, मरहूम मोहम्मद रफी एंड लता जी की आवाज में।

सफाई मोहम्मद रफी और लता जी की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गए आप सभी सुनने वालों की सेवा में। अब की बार ये गाना की ओर हम आपको ले चलते हैं मोहम्मद रफी एंड सुमन कल्याणपुर के

मुलाकात मोहम्मद रफी और सुमन कल्याणपुर की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। आसरों मीठे ये तमाम पुरानी नगमे आप सुनते हैं और काफी पसंद करते हैं। मुकेश और लता जी की आवाज में अगली बार हम आपको ले चलते हैं। फिल्म का नाम है संगम। संगम फिल्म का ये गाना पेश किया जा रहा है।

0: मैं चलता हूँ, मुझे जाने दो, मैं चलता।
1: सुन बलो, हमारा आज का प्रोग्राम बस यहीं से खत्म समाप्त होने पर आ गए हैं। आज के प्रोग्राम जो है सुनने के लिए लाख लाख शुक्रिया, धन्यवाद। आसरा उम्मीद है प्रोग्राम सुनकर और काफी पसंद किया है। बैठा आपका खिदमत गुजार रबीन। हर एक इन्फॉर्मेशन के लिए, इन्फो के लिए टेलीफोन नंबर है 0365 65 65 60। बस आप सभी सुनने वालों से हम फिर मिलेंगे।

हेलो नमस्ते और आदाब। मैं हूँ आपकी आरजे अंशिली क्रमलाल, जो आपका तहे दिल से स्वागत करती है प्रोग्राम गीतों के लहर पे। हेलो अलमागल, दिस इज यू आरजे अंशिली क्रमलाल, तू वार्त वेलकम हेट इन इट प्रोग्राम गीतों के लहर। Wilt reageren? Kan het altijd. Surf naar de website www.radiosbs.nl of bel gerust met 030-262-6611. En voor alle andere info kunt u altijd bellen met 030-265-6560. Het eerste liedje van vandaag is...

गुर नालो इश्क मीठा इस आर द फिल्म एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा। एन गजोंग दोर लता मंगेशकर कॉम आर द फिल्म आरजू। अजीर उठकर अब कहाँ जाइएगा, जहाँ जाइएगा हमें पाइएगा।

0: Churakje du mera, guria chili. Deze keer is dit liedje gezongen door Benny de Jaal en Mol Malik en Anu Malik. En kwam uit de film Hangama 2. Uit de film Ghail komt dan Pyar te moet zeker tiho, don't say no. Gezongen door Shabbir Kumar.
1: Ik heb je pyar nahi karti. Kripya aap rasta denge?
2: Please.
1: Thank you.
3: Varsha ji, keh do ki tum mujhse pyar karti ho.
1: तुम्हें कुछ भी हो जाए मैं तुमसे प्यार नहीं करती। अब पता चलेगा बच्चू कौन हूँ मैं।
3: मलिका शरारती है। वो तो ऐसे मजाक करती है, बहुत प्यार करती है मुझसे।

सुना है तेरे दिल पे मेरा, कहीं ना कहीं नाम लिखा है। देसी केर खसाओ दो जुबेन नौटियाल आयो द फिल्म सनक। हाँ वादा फ्यादर मैं चाइलेंद्र सिंह मैं आयो द फिल्म जमाने को दिखाना है। होगा तुमसे प्यारा कौन।

सपनों का राजा कोई दिल में था मेरे समाया, आज मुझे मिल गया है, यही है यही है यही है मेरा प्यार. Dit prachtig liedje is gezongen door Shailendra Singh en Sulakshana Pandit en kwam uit de film Chalte Chalte. Gezongen door Jibin Nautiyal en Preetam komt het volgende liedje via Radio SBS in het programma Geeton ke Leher. Uit de film Tadap komt Tu Mera Ho Gaya Hai.

रोने दे आज हमको, तू आंखें सुजाने दे, बाहों में ले ले और खुद को भीग जाने दे। है जो सीने में कैद दरिया वो छूट जाएगा, है इतना दर्द कि तेरा दामन

0: अधूरी सांस थी, धड़कन अधूरी थी, अधूरे हम, मगर अब चांद पूरा है फलक पे और अब पूरे हैं हम।
1: मेरे हाथ में तेरा हाथ है इस आउट द फिल्म फना एंड आउट द फिल्म रूही आफ्ता इस फॉर्मेट लीजिए फिया रेडियो SBS किस्तों।

बिंदिया चमके चूरी खन के लौंग मारे लश्कारे हम हो गए तुम्हारे, इस गजों दूर सोनू निगम एन एल के याचनिक एंड कौम तो द फिल्म तुमको ना भूल पाएंगे। Uit de film Bajrangi Bhaijaan is het volgend liedje via Radio SBS. In het programma Gieton Killeher hoort u dan Elele, elele, elele, elele, elele, elele, tel beta selfie, lele, re.

जब भी तेरी मैं कम देखता हूँ इस खजों दूर जुबेन नौटियाल दी थी दिस सो मोय ना ना जुबेन हाउ फेदर मेट शफाकत अमानत अली एंड कैरलिजा ये रात ताल अद फिल्म कभी अलविदा ना कहना कॉम दिलीचे मितवा.

ये बेखुदी दीवानगी और द फिल्म तुमको ना भूल पाएंगे। एन खसों दूर जुबे नौटियाल कौम होने लगा और द फिल्म एंथम।

गूंजी सी है सारी फिजा, जैसे बजती हो शहनाइयाँ। आओ ना क्वम ऑफ द फिल्म क्यों हो गया ना, एन अतीश का अख्तियार दूर, विवेक ओबरॉय एन ऐश्वर्या राय दी तैत वारस आर डेट। Uit de film Want It komt het volgend liedje via Radio SBS, gezongen door Wajid en Amrita Kuk. Just love me, love me, love me.

भी सरफिरा तू भी सरफिरी इस गजंगो दौर सिद्धार्थ माधव नीति मोहन एंड करण मेहता एंड कम्ड आउट द फिल्म कट्टी पट्टी एंड आउट द फिल्म कभी अलविदा ना कहना कम्ड द टाइटल सॉन्ग गजंगो दौर अलका याचिक एंड सोनू निगम।

जीता था जिसके लिए, जिसके लिए मरता था, एक तू ही वो लड़की है जिसे मैं प्यार करता था। इस वसंग दुर कुमार सानू है बस आउट ऑफ फिल्म दिलवाले। Gaan we daar verder met Bajrangi Bhaijaan. Gezongen door Javed Ali komt Tujo Mila.

ऐ मेरी जोहर जबी, तुझे मालूम नहीं तू अभी तक है हसी और मैं जवां, तुझ पे कुर्बान मेरी जान। फिल्म वक्त से आपने सुना मन्ना दे की आवाज़ में, और रेडियो SBS FM के प्रोग्राम में आप सुनिए अगला गाना। के की आवाज़ में आप सुनिए फिल्म गैंगस्टर से, भीगी भीगी सी है रातें।

तमाशा से आपने सुना अरिजीत सिंह और अलका याचिक की आवाज में अगर तुम साथ हो, और अब आप सुनिए अगला गाना प्रोग्राम गीतों की लहर में। कमाल खान और अलका याचिक की आवाज में आप सुनिए तुमको ना भूल पाएंगे से, क्या हुआ तुझे।

तुमसे मिलके ऐसा लगा तुमसे मिलके अरमा हुए पूरे दिल के। इस आयुध फिल्म पर रिंदा खसंगदोर आशा भोसले एंड सुरेश वाडकर खसंगदोर हेमंत कुमार कॉम दान आयुध फिल्म खामोशी फिया रेडियो SBS तुम पुकार लो।

0: कैसा है जनाब का?
1: क्या ख्याल है आपका?
0: तुम तो मचल गए, हो हो हो,
1: यूं ही फिसल गए। आ, आ, आ।
0: अच्छा, फिसलने का अगला लोकेशन
1: बिन भेज रहा हूँ, संभाल के चुप क्या चाहे।

0: मुख्तार जी कहानी अभी खत्म नहीं करते हैं।
1: नहीं नहीं
0: नहीं करना चाहिए ना,
1: इतना इतना खूबसूरत गाना है। हाँ। तो इतना और इतना जब खूबसूरत ऑडियंस हमारे साथ है तो इस गाने का एक बीच का अंतरा जो हमने नहीं गाया है वो हम सिर्फ कीबोर्ड का सुर लेकर गाते हैं और जो मुखड़ा है आप सब हमारे साथ मिलकर गाइए, तभी ये सच्ची श्रद्धांजलि इन महान कलाकारों को होगी।